0: Suka dengarkan gosip-gosip panas dan perkembangan industri filem Hollywood dan Bollywood?
1: Mom, take a chill pill.
2: Yes, ma'am. English में बोल देंगे, लेकिन अब हम फिलहाल जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा है.
0: Jom dengarkan Koli Boli setiap Sabtu hanya di Zone Inspirasi Pahang FM. Koli Boli.
3: Ya boss.
4: Got the man with the pen right here. Bringing swagger to man right here. Living up on sipping on beer. Yeah, clap for me.
5: Radio Malaysia Pahang FM.
6: Ma, siapa yang nak dengar lagu Koli Boli? Ah, bolehlah hantarkan WhatsApp kat kita 0103207488. Terus layan Pahang FM 1.5.
7: Radio Malaysia Pahang FM.